इलाके हासिल करने में मदद दे सकते हैं। बहीरा अहमर और खलीज अदन के लिए यह खतरा तवील मुद्दती दिखाई देता है, चूंकि अलशबाब के अहम मराकज जनूबी और वस्ती सोमालिया में हैं। इसलिए तंजीम के लिए खलीज अदन में तजारती बहरी जहाज़ों को मुस्तकिल निशाना बनाना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन अगर शुमाली सोमालिया खासतौर पर सनाज के पहाड़ी इलाकों में उनका असर रसूख बढ़ता है और वहाँ हौसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक मुस्तकिल नेटवर्क कायम हो जाता है तो सूरत हाल यकसर बदल सकती है। ऐसा मंजरनामा यमन के साहिलों से हौसियों के बढ़ते हुए दबाव को अफ्रीकी जानिब से एक दूसरे खतरे के साथ जोड़ देगा। इस पेशरफ का एक और अहम पहलू हौसियों और अलशबाब के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद तआवुन का मुमकिन होना है। ज़ैदी शिया पस मंज़र रखने वाले हौसियों और अलकायदा से वाबस्ता सुन्नी अलशबाब के दरमियान कोई मजबूत नज़रियाती हम आहंगी नहीं है। उनके ताल्लुकात की असल बुनियाद हथियार, मालियात, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स और बाहमी ऑपरेशनल मफादात हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि बहीरा अहमर के इर्द गिर्द मौजूद मुसल्लह गैर रियासती अनासर नज़रियाती ब्लॉक्स के बजाय अमली मफादात और सलाहियत के नेटवर्क्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। हासिल कलाम यह है कि हौसी और अलशबाब का बढ़ता हुआ गठजोड़ अगरचे बहीरा अहमर में फौरी तौर पर किसी नए बहरी जंगी महाज का पेशरमा नहीं है, लेकिन यह खत्ते में गैर मुतनासिब खतरात की नौयत बदलने का वाज़ेह इशारा है। तकनीकी महारत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और हथियारों की देखभाल की मुंतकली अलशबाब की ना सिर्फ सोमालिया के अंदर कार्रवाइयों की सलाहियत को बढ़ाएगी बल्कि खलीज अदन के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगी। इसलिए आने वाले वक्त में इस मामले को महज हथियारों के स्मगलिंग के जाविये से नहीं बल्कि यमन सोमालिया रूट पर लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, तकनीकी अमले की नकलो हरकत और शुमाली सोमालिया में बनने वाले नए ढांचों के जरिए मॉनिटर किया जाना चाहिए। तुर्की के लिए यह मंजरनामा सोमालिया में जारी सिक्योरिटी तआवुन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को इन नए खतरात के मुताबिक ढालने की ज़रूरत पर जोर देता है। लिहाजा हौसी अलशबाब ताल्लुकात को अभी एक मुकम्मल इलाकाई इत्तेहाद नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसे बहीरा अहमर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सिक्योरिटी के आपस में जुड़ने की एक इब्तदाई इंतबाही अलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शोरश ज़दा अफ्रीका।

0: बाज़ वेलक्रो से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि वह आसानी से अपने स्पेस सूट पहन सकें और उतार सकें। डाइविंग सूट बनाने वालों ने जल्द ही उसकी पैरवी की और जल्द ही इसकी सूट्स और खेलों के दीगर सामान में हुक और लूप टेप इस्तेमाल होने लगे। वेलक्रो, जिसे इब्तदाई तौर पर जिपर के बगैर जिप के नाम से मार्केट किया गया था, वक्त के साथ साथ बच्चों के कपड़ों की मसनूआत में इस्तेमाल होने लगा और 1960 की दहाई के वस्त तक मैस्ट्राल का कारखाना सालाना 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा वेलक्रो टेप्स तैयार कर रहा था। वेलक्रो टेप इस फैशन डिज़ाइनर की कामयाबी के बाद एक फैशन आइकॉन बन गया, जिसे फैशन शो के लिए आखिरी लम्हात में अपने कपड़े मुकम्मल करने पड़े, लेकिन जब उसके इस्तेमाल के लिए बटन ख़त्म हो गए तो उन्होंने मेज़ पर रखी वेलक्रो टेप का सहारा लिया। स्विस मोजिद की वेलक्रो प्रोडक्शन में 1978 तक तकरीबन इजाराधारी थी, लेकिन जब वो अपने पेटेंट के हकूक की तजदीद करना भूल गए तो सबसे पहले चीन और जनूबी कोरिया में तैयार की जाने वाली सस्ती तकलीद ने मार्केट को भर दिया और फिर मकामी सनतकार हर मुल्क में अपने अपने ब्रांड्स के साथ नमूदार हुए। वेलक्रो टेप्स, जो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा कार आमद ईजादात में से एक हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, ना सिर्फ कपड़ों या जूतों में बल्कि सजावट की मसनूआत से लेकर दिल की सर्जरी तक बहुत से मुख्तलिफ शोबों में ये देखी जाती है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।